हेलो, हमारा नाम है सुभाष और आप लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

बड़ी डिफी बड़ी डिफी कल्टी कल्टी डिफिकल्टी से मिलता है तकीला नकीला हबाहूबा लबालूबा दुम तक दुम तक

0: Dit is Ujjala Live. Toe, Janne, hij toch?
1: Dokter ji, please, ek baat sunti jaiye. Bas ek baat, dokter saab.
2: Kahiye.
1: Wo jo aapne mere liye dua ki thi na, zarur sachche dil se ki hogi. Bhagwan ne sun li hai, aur mujhe ho gaya hai.
2: Kya ho gaya hai?
1: Mujhe pyar ho gaya hai.
2: Achha, mubarak ho.
1: Lekin aapne ye to pucha hi nahi, kisse?
2: Arey ha, ye to main puchne bhul gayi. Kisse?
1: जी वो
2: बोली बोली कौन है वो खुशनसीब
1: जी वो खुशनसीब आप ही हैं
2: ओह थैंक यू वेरी मच माफ करना मुझे कोई भूख नहीं
1: सुनिए ये भूख वाली मोहब्बत बिल्कुल नहीं है
3: ओए चांद जी

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

अंदेशाए तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू किश्ती भी तू साहिल भी तू। देख आकर कूचाए चाके गिरेबा में कभी, कैस तू लैला भी तू सहरा भी तू महमिल भी तू।

मुसलमान दर से शहीदा को भूले। मुसलमान क्या काम के रह गए हैं, फकत नाम है नाम के रह गए हैं। है पेशे नजर गाजियों का फसाना के झुकता था जिनके

नागपुर में गोया लाखों बरकतें लाए थे वो, जिस जगह पर उनको पागल खाने में डाला गया। हाय लेकिन ये न समझे दुश्मनाने।

खुद से जब उतारा है उसे नीचे तो फिर क्या पूछना। दम में वो बीमार बच्चा दौड़ने चलने लगा। जब करामत हो गई मशहूर ताजुद्दीन की, उनके रहने को जगह अपने यहाँ राजा ने दी। सैकड़ों बंदे मुरादे उस जगह पाने लगे, हिंदू मुस्लिम पारसी।

दिल धड़क कर रह गया हर बानी बेदाद का, झूठ से सच्चाई की फितरत बदल सकती नहीं, हक के आगे एक भी बातिल की चल सकती नहीं। हिंदू मुस्लिम इस तरह करते हैं उनका एहतराम, बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा बिरहमन राम राम। सैकड़ों पर आज भी है आपका लुत्फे अजीम, आपकी रहमत से माला माल है बाबा करीम। आज भी अनवर वो ताजा बाग में आबाद है, उनके खादिम हर

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net।

चला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्त इन जिया इवेंट सेंटर हे यू

हमारे सभी सुनने वाले को हर को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। आज शुक्रवार 3 जुलाई को, फ्राइडाग 3 जुली 2026। गुडमॉर्निंग अलमाओ। हमसे पहले प्रोग्राम को आप लोग सुन रहे थे आरजे राशिदी के जरिए। आरजे दंकवेल फाइन दख्तु खवेंस एंड फाइन वीकेंड। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी वाह हो, आप रिको हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप रिकी ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। करीबन 12 मिनट व्यतीत हो चुकल है 9:12:09। यहां से लेकर ठीक 12 बजे तक आपके साथ हम देने वाले हैं। उजाला रेडियो का दफ्तर का फोन का नंबर है 02309907 पर आप लोग तार कर सके हैं। और उजाला रेडियो का दफ्तर खोले जाएंगे दिन में 10 बजे लेकर शाम में 3 बजे तक। फरमान दख्तों में 7:00 to 3:00। उजाला रेडियो का वेबसाइट का पता है www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर जानकारी आपको मिल सकेगा। मैं हूं सुभाष सिंह गोविंद और जहां तक मेरी आवाज पहुंची वहां तक मैं आप सभी को आज शुक्रवार का प्रोग्राम में बहुत ही प्यार से स्वागत कर रहा हूं। वेलकम खुद मोर्ख।

ओम जय लक्ष्मी मातंग और से सुंदर सा भजन जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रही थी और उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुने बोलो और करीबन 22 मिनट बैजी थे चुकल है 9:23 मिनट नौ पर नहीं

वेलियर मेरा जीवन ने गोरा गोरा कागज रह गया, और इस तरह से किशोर कुमार जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। और देखा जाए भाई राकेश दनहाक शहर में प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मोरखे और विकेंद भाई जी बात खाऊ एटन या वेल

मोहब्बत तू ही मेरी आखिरी मोहब्बत हो। आयुषरों से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे और आशा है कि ये गीत जो आप लोग सुने आप सभी सुनने वालों को पसंद आए हुए होंगे। वेल यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं और दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं।

0: तू ही तो मेरी नसीब में है, तू जो मिला तो लगता है खुदा भी हमारे साथ है। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। हमारे प्यारे सुनने वालों, करीबन 20 मिनट बाकी रहा 10 बजे में तुम तक मिनट 14 ए खुद मुर्ख अलमाओ वेल।
1: मेरी तलाश बस तुझ पर ही आकर रुक गई, तेरी बेरुखी से।
0: चाहे जहां पर आप लोग प्रोग्राम को हमें सुनते हैं, सुनते ही जाइए दिन में 12 बजे तक।
1: तू किसी और का हो,
0: अगर आप लोग काम करते हैं, अगर आप काम पर हैं,
1: और मेरी जिंदगी
0: चाहिए तो कॉफी के साथ बैठ के इतबाउर बहुत ही प्यार के साथ प्रोग्राम को सुनते ही जाइए प्यार के साथ। यार जो भी करना है प्यार प्यार, प्यार।

लाल मेरी तलाश बस तुझ पर आकर रुक गई। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे अरिजीत सिंह जी के आवाज में, ये खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। चलिए अब की बार देखा जाए उस दौर में भाई राजेश बनारसी प्रोग्राम को भी बैठ करके सुने हैं। और इसके दे में लीना रामेश्वर खुद मूर्खा।

बोले यार बोले प्यार मांगा है बोले खुशी से दे दो तुम और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो एक और खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और इस तरह से यबो उजाला रेडियो आई बोल 10 मिनट बाकी रहा 10 बजने में 3 मिनट फॉर 3

वेल वेल यार, दिल दिल तेरे नाम आज से हो गया। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और देखा जाए तो मिला भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मुर्ख एकदम बेल्जियम शहर में। और चलिए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो इस तरह से गाना जो आप लोग सुनेंगे तो चलिए मिला ये गाना तुम्हारे नाम जब आई बॉय।

3630808 दिल से बात करना है तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं

रेडियो कार्यक्रम जो आप लोग सुन रहे हैं आज शुक्रवार 3 तारीख के जुली का प्रोग्राम जमेल फ्राइडे 3 जुली और हेट इज बाइना वीकेंड और वीकेंड में क्या पकाओ कोई का खाओ कोई यार व्हाट गाउ फंडा कोकन अब लग सब कोई सोचे कि का बनाओ कोई का खाओ कोई सोचते सोचते रहिए और तो दिन बीत जाए तो दिनवा निकल जाए और दिन में 12 बजे तक आपके साथ हम देने वाले हैं एक बेंदर तो त्वाल फिर फंदा ही खुद मोर खालमा आप हरी को शुभ वीकेंड फैन वीकेंड तू खवेंस हमारी तरफ से चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए सुतोमेर में संता भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मूर्ख ये गाना तुम्हारे नाम

बल यार दिल दिल तू ही बता, बोले यार कहां तू छुपा। आओ सरो से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। करीबन 16 मिनट व्यतीत हो चुकल है, 10:17 ओवर 3। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जय चंद्र भी बहुत प्यार के साथ बैठकर प्रोग्राम को सुन रही है। ये गाना तुम्हारे नाम।

बलिया तो ही मेरी खूबसूरत से मोहब्बत है इबादत अवसर से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और चलिए अब की बार तो देखा जाए होवदौर में आनंद मंगरू भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं खुद मूर्ख। और चलिए गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ यार।

और एगो ऐप अंदर आले बोले भाई आज बोले ओकर मिनी पेर खाईगा खूब मोई लुटपुटार खूब शुरुआ में दोक्सा और दाल भरी के रोटी

मेरी हर धड़कन के बरसे, बस बस यही अरजू है। और से खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, वेल उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, आज शुक्रवार का प्रोग्राम आमस्टरडम शहर से प्रोग्राम को हम बना रहे हैं आप सभी के लिए। आप जोन ची चाहे जोन ची आप करते होंगे, वेल प्यार से यार, सभी चीज प्यार से होता है, प्यार से बोलना, प्यार से चलना, प्यार से उठना, प्यार से बैठना, या वेल

तेरे तेरे वेल दिल तेरे प्यार में हो गया आयुषर से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और देखा जाए होफदौर्फ शहर में मानो भी प्रोग्राम को बैठकर सुने अपने सुनुषा के लिए गाना को मांग किया है बहुत ही प्यार एंड मोहब्बत के साथ। तो चलिए ये गाना पेश है और इस तरह से व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9203630808 पर आप लोग मुझे ऐप कर सके हैं। अगर आप कोई गाना भी सुनना चाहेंगे यार तो ये मुमकिन है या वेल 9203630808 पर

तू ही मेरी पहली धड़कन है एंड तू ही मेरी आखिरी धड़कन है, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। वेल, देखा जाए ब्रेडा शहर में जहां पर इस वक्त श्रीमान और श्रीमती बिहारी भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मुर्ख, और अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और इस तरह से गाना जो आप लोग सुनेंगे, और देखा जाए परिवार सुचित भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मुर्ख। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, यू आर द बेस्ट।

कितना खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, आई बॉय कितना मोय कितना 20 साल गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और कई समय लिखी से बोले जो कोई ना बैल करेगा 4-5 इयर्स द हेल्प इज द बेस्ट वन, आई बॉय इयर्स द हेल्प इज द बेस्ट, या वेल एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। वीकेंड यार वीकेंड तो है एंड सबको अगोरे वीकेंड में का बनाओ कोई का खाओ कोई मकेश अल्स जो कोई ना बेल करी अल्स नीमंत जो बेल्ट यार भुजल भात इज ओक द बेस्ट वन, भुजल भात मेट अंडा आई या या एंड अंदर्स ब्रोड दाख यार ब्रोड दाख।

बल यार तेरी प्यारी प्यारी सूरत को बोले किसी की नजर ना लगे, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने अमसलम उसमें परिवार सौदागर भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मुर्ख ये गाना तुम्हारे नाम

tutak tutak tutia and I love you. Ayaya. उजाला रेडियो का प्रोग्राम है तो लास्ट रुच खत्म है यार लास्ट तक घंटों यार ओ इतना हल्दी फॉर बे चल जाए कि तू जान ना पाइए करीबन 10 मिनट बाद जैसा चुकल है 11:03 नौ फॉर एलो फॉर द मोर खाना

0: बॉय लौट आ पास मेरे,
1: तुझे सुन ले मेरी ये दुआ।
0: कुणाल कुमार की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, लौट आ यार मेरी जान, बोले लौट आ, बोले चाहे जहां पर है तू, बोले लौट आ। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो इस गाना को गाने वाले होंगे सुधीर सिवद। Yeah, well. At this bay now we can

वल शीशे से बनी लड़की और बोले पत्थर के नगर से बोले आई। और से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने सुधीर शिवदत्त जी के आवाज में, एंड यू आर है उजाला रेडियो है

0: देखो अवसरों से मोहम्मद रफी जी के वंश में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और मेलाल एगो पीर एगो अपंदर आल हैगा और रविंद्र सिंह पठाई सेगा अपवा फंदाख वर्तत ब्रोच फेखा शारशी और सी रकम कोमर और बोले जो वेरवा एक्स्ट्रा होत रही था बोले वो काम है अफ ब्लूस करेगा जीरो कोला से वेल लेकर या वेल हम बोली चाहे जो चितोलक बनाइए चाहे जो चितोलक बनाए के खाइए बाबो अच्छा यही तो मैंने यही चीज मैं चाय या तो कॉफी के साथ
1: मैं ना तुझे भुला सका
0: या वेल
1: तूने कैसे भुला दिया
0: मैं ना भुला सका तूने कैसे मुझे भुला दिया यार

और साढ़े ग्यारह का वक्त है, तो प्रसिस हाल्फ ट्वेल्व एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जय रोटरडम शहर में परमिला भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मूर्ख। और चलिए ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है।

मेरे यार तू मिला तो प्यार मिला यार, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और देखा जाए तो अब की बार गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं तो अरिजीत सिंह जी के आवाज़ में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और गाना पेश है इस तरह से जहां पर भी आप लोग सुनते होंगे यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

वेल यार अभी सरल से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे अरिजीत सिंह जी के आवाज में। हमारे प्यारे सुनने वालों करीबन 20 मिनट बाकी रहा 12 बजे में नख्तवंत मनुतंत खान यार तो हमारे तोर साथ एकदम से दोन या वेल आई बॉय आतिफ असलम एंड श्रिया गोसाल जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे।

आतिफ असलम एंड श्रिया जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। एंड चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो इस गीत को मांग करने वाले दनहाख शहर के रहने वाली माँ रीता भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मूर्ख। तो चलिए ये गाना तुम्हारा नाम कर देता है किशोर कुमार जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और यार थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ। समा शमा है सुहाना सुहाना

0: कल शमा है सुहाना सुहाना,
1: समा है सुहाना सुहाना,
0: एंड हर दिल में है सुहाना, हर मोहब्बत में है सुहाना। और इस तरह से किशोर कुमार जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और देखा जाए दरहाशर में तंत्र अनी भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं। तो चलिए गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ।

0: अरे यार कब आओगे, बोले खत लिख दे, बोले कुछ तो बता दे कब तू आइये। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, फूल भेजा है तुम्हें खत उसमें। एंड यू आर उजाला रेडियो है यार। करीबन करीबन करीबन 9 मिनट बाकी रहा, 9 मिनट बाकी रहा 12 बजने में।
1: तकदीर के
0: आ या या या।

0: वेल वेल यार, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और वो भी खास करके देखा जाए यार कितना मोई गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और हमारे प्यारे सुने वालों, देखा जाए घड़ी तरह तो थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ कुछ मिनट कर और आप लोग के साथ, इसका मतलब यह हुआ कि हम आप लोग से आप इजाजत चाहेंगे और आशा है कि जो प्रोग्राम जो आज हमने बनाए सजाए आप लोगों के लिए, आप सभी सुनने वालों को पसंद आए होंगे। हमारा साथ देने के लिए, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आने वाले दिनों में फिर आप लोग से मिलेंगे। आप लोग मौज से रहिए, अपना वीकेंड जो है आप लोग मौज से बिताइए, जो बोइए, जो कुछ खाइए, जो कुछ बनाइए तो लोग मौज से खाइए पिए और तो लोग मौज से रहिए। और चलिए ये गाना जाते जाते आप सभी का नाम कर देता हूं, अपना वीकेंड तो लोग मौज से बिताइए, अपने आप की जरूर से ख्याल कीजिए, जो भी करना है प्यार से दुलार से कर लेना, कोई से प्यार है कोई से मोहब्बत है बोल देना यार हमें तुमसे मोहब्बत है।
1: ये हवाएं तेरी तू अगर,
0: आप लोग मौज से रहिए।
1: सारी
0: खिदमत की आपको तो सुबह सी गोविंद, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज़।

याद रहेगा, हाँ याद रहेगा, प्यार का ये रंगीन जमाना याद रहेगा। फिल्म उमर कैद और गीत के गाने वाले लता जी एंड मुकेश जी। उजाला रेडियो है ये।

मुंड संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा, सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

संजय सावन से आप गीत को सुने की थोड़ा प्यार चाहिए। उजाला रेडियो है ये, हर एक को शुभ दिन, शुभ रात्रि पेश है हम सब की तरफ से। हम

फिल्म का नाम मैं तेरा हीरो एंड स्टेशन है द लुक्स्ट एंड गजलस्ट ओ जला रेडियो।

ये है उजाला रेडियो, रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

0: उजाला रेडियो, हमारा उजाला रेडियो, उजाला रेडियो नंबर वन, उजाला रेडियो सबके साथ।
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

और क्यों होता है प्यार, क्यों होता है प्यार, क्यों आता है बहार, ना तुम जानो ना हम। लकी अली और रामिया से आप सुने फिल्म का नाम कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, उजाला रेडियो से। अगला गीत उदित नारायण की आवाज में होंगे।

0: खुशी।
1: तू मेरे दिन में मेरी रातों में, तेरी याद हम सफर सुबह और शाम। उदित नारायण की आवाज, फिल्म का नाम और प्यार हो गया।

0: ugyanaz, Szona Csireia.
1: ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना, अरे ना ना ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना। प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना।
2: लड्डू बोल लड्डू, अरे लड्डू लड्डू लड्डू
1: लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। एक नजर है एक हंसी है कीमत किसकी बंदू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, इनको लेकर बांधे लड्डू खाए दास कबीरा। रे पर देखो देखो आहा आहा, रे पर देखो देखो आहा, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू।
2: अबे हट, खाली जिसका पेट उसका प्यार से खाली बोल, और इस लड्डू में दुनिया का हर ऐश दिया है घोल। सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल। सोने का लड्डू ले लो प्यार का लड्डू, ले लो सोने का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो सोने का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो सोने का लड्डू,
1: प्यार का लड्डू,
2: सोने का लड्डू,
1: प्यार का लड्डू,
2: प्यार
1: प्यार प्यार।